मिलन गीत सिंगल चित्रपट संगीत अमरणीय रसायक नाता वालपोल के हंड्रेड तीन ए अमरणीय पिरसुद निर्माण सिले हदवत सुजो में लंगावन शब्द हद राहु मुकारी गीते तुली होंद में देना मैं गीते ऐसू बीट हितरे ने चित्रपट एक दर्शन या नियंत्र रात्र संदेलिय सा ए आतरी गलायन सुवंद पिरनु गायन सरल रिद्म्यक निवे एक गीते ते गमनक वार्न्यक सा सिनेमा लोके अमरनीय गीत करन शब्द्यक तथा वालपोल के हंड में गीते आन किनाट लोके पीरत वेनवा सुवंद सांसुन सा सिनेमा रसें पिरनु में गीते लंका रेडियो ओब वेत हंद राव मुह के लिए Hoyda Bringanwe Inan Aina lead thus the atmosphere classes Sri Lankese is a film kunst Wunderschön Einfängt. Gesungen from Lata Walpole und Armutusami Musikalis gestaltet trägt eine besondere Ruhe und Eleganz. Es ist ein Stück, das die Magie alter Filmzeiten zurückholt. Warm, ruhig und voller Atmosphäre. Yes, Pussy by Lanka Radio. Lata Walpole.

मिलन गीत सिंगल चित्रपट ए पीरुनु सुवंद शास्य आरगने गीत धर्मदास वालपल के हंड्रेड तीन गैम्बरू शब्द पिरिसुदु गायने सा गीते जीवेदन सत्य फुल्ली गोना तुल होंदिम दनेनो में गीते असुवित हेतते इन्ने गमे पारन मोहतक खता सरल सतुट सा सिनेमा लोके वर्ण मुत्तुस्वामी के संगीते में गीते देन हंगीम अतिशय विशेष है सरल रिद्म ए वगेम गीते गमनक सुवंदक सा पारन काले रसे गेनेन शब्द धर्मदास वालपोलगे हंड फुल्ली गोना आहन केनाट सरल सतुटक पारन रसयक सा सिनेमा लोके नव मून वरक एकतु करनो लंका रेडियो मगिंग ए गीते ओबट पुलवन दन समान देन्न फुल्ली गोना होइट हरन वियसी नोक काइन लीड फ्रॉम वामन क्लंग क्लासिस श्रीलंकेस फिल्म साइट सुरू ब्रिंगन फुल्ली गोना के सुंगन फोन धर्मदास वालपल उन आर मुत्तुस्वामी म्यूजिकालिस ट्रेक्ट आइन बेसोंदर ट्रेडिशनल स्टीमू वालपोलास स्टीम हट हियर आइन क्लार क्राफ्टवल एलिगेंस डी दस लीड वी आइन सेन आउस आइनम अल्टम फिल्म वर्क एंड लिस्ट निस लाउड सोंदर वी आइन सम्ट इंटरग्रुंड दे एटमोस्फेयर ट्रेक आइन लीड दस आइन स्टुक डोप लेबन आइन फक फ्रॉइड उन्दी मगी फंगन फिल्म साइटम वीडर लेबेंडिक मा यस पुसी बाय लंका रेडियो फुल्ली गोना

मिलन गीत सिंगल चित्र प्रसंगी ते रसया लता वालपुर के हांडट थिए न ए मुर्दु स्वीरी सुदु शब्दे सा गीत रे जीवे देन हंगीम सुललित उ कला तुल सेमिंग बिरते न मैं गीते असु वित हित ते ने सिनेमा लोके मोहतक सेमिंग गलायन संगीत निहंड वर्ण लता वालपुर के हांडिंग लोके मुर्दुलेस विवृत वेन हैंगी मुत्तुसामिगे संगीते में गीते देन रसे अतिशय सरलाई एत गीते गलपना उरिंग मुर्दु रिद्म्यक सांसुं वर्ण्यक सा पारन सिनेमा रसे गिनन संगीत्या लता वालपुर के गायने में गीते देन आलोके हुंगक विशेषाई सेमिंग सांसुं हदवृत्त लंगावेन हैंगीमा अद में गीते ओबे दवसत सोंद पिनु सांसुं रसेक गेनो लंका रेडियो सुललित वु कला Suharan next lead sulalita ukala from Lata Walpole.

मिलन गीत पनस्पाई काली सिंगल चित्रपट संगीत सुंदर पिरुनु अतिशय मनोरम गीत लता वल्पोल के हंडट तीयने मुर्दु सुंद पिरुदु शब्द सा गीत अलंकार संद कोमली तुलिंग सेमिंग बिरुतेनो मे गीत असुविते हितते ने संद एलियन पिरुनु रात्र नियंद सनसुन सिनेमा लोके रसबर गीयक एकतुला अतिमोत मुत्तुसामी के संगीत मे गीतेट दिन रसे अतिशय सरल गीतेट गलपन मृदु रिद्मक सेमिंग गलायन वर्ण्यक नमसे पनाय दशके संगीत रसे गिनन शब्द तथा वल्पल के गायन में गीतेट दिन आलोके हुंगक विशेषाई सेमिंग सांसुंग हदोतर लंगावेन अंगीम अद मे गीते उब दवसट हंगीम अद मे गीते ओबे दवसट सुंदर पिनु सिनेमा रस्य गिनेनो तंका रेडियो विंग संदर कोमली गीते नेक्स्ट लीड द क्लासिस फिल्म साइट श्रीलंका एंड स्टुक आउस दिम या 1900 पुम पुम पुम सिंह पोलर रूह उन एलिगंस संदर कोमली गे सुंगन फोन लता वालपोल वर्क वी आयन सामट फिल्म सेन उंट मोनलेस वालपोला सिस्टम ट्रेक्ट आयन बेसुंदर वाइस साइट उन क्ला हाई दी दस लीड वी आयनम स्टिल एन मोमेंट इम किनो असाइन लेस्ट आयन लीड दस एटमोस्फेर दे अल्टन फिल्म वेल्ट वीड लेबेंडिक मार्क्ट उन आयन वैम गेपुल पोल रूह सेंट यस उसी बाय लंका राजू संद कोमली

मिलन गीते गायने करने मोहिदीन बेग समूह के रानी ओह मैं चित्रपटे हिंगन्ना के चाहते रंगपानो ये चाहते रंगपान गमन तो मैं गीते गायने करने अब समझो एक गीते तो दें।